0: اوكي رازي جي ladies and gentlemen. गुरुज मुंगसर नेक्स्ट कॉलर सोकला जी अस्सलाम वालेकुम.
1: वालेकुम सलाम.
0: सड़िया माशी बखैर सोको ने चिरतना
1: मानूर खबरकुम द मर्दान
0: मानूर द मर्दान शरीक रजा आय हाय कालम पनीमा खिलाड़ो हा

ओके जनाब, एक बार तो फिर मैं आप लोगों को, आप दोस्तों को, तमाम दोस्तों को वेलकम कहता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच कि आप मेरे संग संग हैं, मेरे साथ साथ हैं। एफएम 94 रेडियो दिलबर सोबी की आवाज सुन रहे हैं जी। अच्छा, आने का इरादा तो खैर मेरा नहीं था, लेकिन यहाँ पे आकिब जान ने मुझे ये कह दिया, कहा कि भाई प्रोग्राम करना है 10 बजे से लेकर 11 बजे तक। सो 10 बजे से लेकर 11 बजे तक मैं आप लोगों का, आप दोस्तों का साथ दूंगा। इस साथ में अपना साथ आप जरूर शामिल कीजिएगा। और अपना साथ कैसे शामिल करेंगे? थ्रू मैसेजेस, लाइव कॉल्स, और आप लोगों की लाइव कॉल्स को भी एंटरटेन किया जाएगा, शामिल किया जाएगा, और साथ ही साथ आप लोगों के मैसेजेस को भी एंटरटेन किया जाएगा। लाइव कॉल करने के लिए 09382804595 इस नंबर पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। और इसी के साथ साथ अगर आप हमें मैसेज करना चाहते हैं तो मैसेज करने के लिए 03072700666 0307 27006। मेरी कोशिश यही होगी कि भाई आप लोगों के लिए हम मिक्स लैंग्वेजेस में बात करें, लाइक पश्तो, उर्दू, हिंदी, ठीक है ना। इन मिक्स लैंग्वेजेस में आप लोगों के लिए हम प्रोग्राम को प्रेजेंट करेंगे जी। एंड अपने होने के एहसास जल्दी जल्दी मुझे दिलवाएं, मुझे बताएं कि आप क्या कर रहे हैं, क्या हो रहा है, क्या करने का इरादा रखते हैं, वगैरह वगैरह।

अच्छा जनाब, मैं कुछ थोड़ी सी हाँ ये बात भी करना चाहूंगा कि आजकल मोबाइल फोन, कॉल फोन, स्मार्टफोन, हैंड्राइड फोन, मोबाइल फोन बहुत ज्यादा इस्तेमाल हो रहे हैं ना आज के दौर में। मोबाइल फोन सिर्फ जो है एक छोटा सा आला नहीं रहा, बल्कि ये हमारी रोजमर्रा जिंदगी का एक ऐसा हिस्सा बन चुका है जिसके बगैर बहुत से लोग या बहुत से लोगों को चंद घंटे गुजारना भी मतलब जो है ना मुश्किल महसूस होता है। कभी यही मोबाइल हमारे लिए दूर बैठे अपने अजीजों से रابطे का जरिया बनता है, कभी तालीम का वसीला बनता है, कभी कारोबार का जरिया बनता है, कभी रोजगार की तलाश का एक रास्ता बनता है, कभी खबर और मालूमात का खजाना और कभी तफरी का सामान बनता है। लेकिन सवाल यह है कि हम मोबाइल फोन इस्तेमाल कर रहे हैं या मोबाइल फोन हमें इस्तेमाल कर रहा है। देखें लिसनर्स, मैं यहाँ ये बात कहना चाहूंगा कि फर्क सिर्फ इतना है कि अगर मोबाइल हमारी जरूरत के मुताबिक इस्तेमाल हो रहा है तो ये एक नेमत और सहूलियत है, लेकिन अगर इंसान अपनी जिंदगी के अहम काम छोड़कर हर वक्त स्क्रीन का मोहताज हो जाए तो यही सहूलत इंसान के वक्त, तवज्जो, ताल्लुकात और जहनी सुकून पर बोझ बन सकती है। बात समझ आ रही है? आज जरूरत इस बात की है कि हम खसूसन अपनी नौजवान नस्ल को मोबाइल फोन से दूर करने के बजाय उसे जो है ना मोबाइल फोन का दुरुस्त, बाइखलाक, महफूज और फायदेमंद इस्तेमाल सिखाएं, इस्तेमाल के हवाले से बताएं। क्योंकि टेक्नोलॉजी से भागना हल नहीं है, टेक्नोलॉजी को सही सिमत में इस्तेमाल करना एक असल शऊर है। अच्छा, बहुत सारे आपने बुजुर्गान से सुना होगा, बड़ों से सुना होगा, वो यही एक बात कहते हैं, ओ हो नन खुश कमदन नन सबा हो दस दे दावाड़ा खुश कमदन खराब कड़ी दी मोबाइल दिलासा खराब दी नो यार मोबाइल दिलासा खराब दी मोबाइल दिलास सिंह खराब दी लगे कमदन दस मात दा हुआ है लगा मोबाइल इस्तेमाल जो सुख सही न किए खन किए नो आगे कमदन खुद खराबी की का सुख खुद इस्तेमाल ही नो आगे कमदन फायदे फायदे हासिल होली। तो बात इस्तेमाल के हवाले से है जी, ठीक है ना। जरा एक लम्हे के लिए जो है ना अपने घर का मंजर देखिए जी। घर में कई अफराद बैठे हैं, वालदैन मौजूद हैं, बच्चे मौजूद हैं, बहन भाई एक दूसरे के करीब बैठे हैं, मगर हर शख्स की नजरें अपने अपने मोबाइल की स्क्रीन पर मतलब जो है ना जमी हुई है जी। एक ही छत के नीचे रहने वाले लोग एक दूसरे से दूर होते जा रहे हैं। पहले घर में बैठकर दिन भर की बातें मतलब हुआ करती थी, होती थी, बुजुर्गों से हालात पूछे जाते थे, बच्चों की पढ़ाई के बारे में जो है ना गुफ्तगू होती थी और दोस्त एक दूसरे के पास बैठकर वक्त गुजारते थे। मगर अब कई मरतबा ऐसा महसूस होता है कि इंसान के हाथ में दुनिया तो आ गई है लेकिन इर्द गिर्द के लोग मौजूद नहीं है, इर्द गिर्द के मौजूद अपने लोग उससे दूर हो गए। याद रखिएगा मेरी ये बात कि मोबाइल ने फासले कम किए हैं मगर जो ना अगर एहतियात न की जाए तो दिलों के फासले भी पैदा कर सकता है, मतलब ये कि दिलों की दूरियां भी पैदा कर सकता है ये मोबाइल फोन। एक और बात मैं कहना चाहूंगा दोस्तों कि नौजवान हमारे माशरे का सबसे कीमती जो है ना एक हिस्सा है। नौजवानों के हवाले से मैं बात करना चाहूंगा यहाँ पे कि नौजवान हमारे माशरे का सबसे कीमती सरमाया है। उनके हाथ में मोबाइल सिर्फ जो है ना एक फोन नहीं है बल्कि एक पूरी दुनिया है। इसी मोबाइल से वो ऑनलाइन तालीम हासिल कर सकते हैं, ऑनलाइन एजुकेशन ले सकते हैं, नई जबान सीख सकते हैं, हुनर सीख सकते हैं, कारोबार शुरू करने के तरीके जान सकते हैं, दुनिया भर के तालीमी मवाद तक रसाई हासिल कर सकते हैं, अपनी सलाहियतों को दुनिया के सामने पेश कर सकते हैं और रोजगार के नए मौके या नए मौके जो है ना तलाश कर सकते हैं। आज एक नौजवान अपने घर में बैठकर ग्राफिक डिजाइनिंग, वीडियो गेमिंग, वीडियो एडिटिंग, प्रोग्रामिंग, ऑनलाइन मार्केटिंग, ठीक है मार्केटिंग, जबाने, फ्रीलांसिंग और बेशुमार जो है ना दूसरे हुनर सीख सकता है। इसलिए मोबाइल फोन को सिर्फ जो है ना तफरी और सोशल मीडिया की स्क्रॉलिंग नहीं रखना चाहिए। हमारे ज्यादातर मतलब मेजोरिटी जो है ना देखी गई है कि बहुत सारे लोग जो है ना इसी फजूलियात में लगे हुए हैं कि कोई भी सोशल ऐप खोले, मैं किसी एक पे बात नहीं करूंगा, तमाम ऐप्स जो है ना वहां पे एक ही तरह का कंटेंट मतलब जो है ना मिल रहा है भाई। टिकटॉक पे देखें, टिकटॉक पे जो है ना क्या कुछ नहीं आ रहा, क्या कोई मतलब जो है ना कंजर तोप वहां पे नहीं खुला हुआ,
ठीक है. इसी के अलावा सोशल मीडिया की फेसबुक ऐप पे आप देख लें, शॉर्ट वीडियोस पे देख लें, यूट्यूब पे देख लें, इंस्टा पे देख लें आप, और बाकी जितने भी ऐप्स हैं वहां उनको आप खोल के देखें, तो वहां पे क्या कोई कंजर तोब नहीं है. ठीक है, बहुत सारी चीजें इस तरह की आ चुकी हैं कि जिनकी वजह से हमारे नौजवान तबाह हो रहे हैं, गर्क हो रहे हैं, और हमारे नौजवानों की जो काउंसलिंग हो रही है वो गलत हो रही है. बात दरअसल ये कि ये घर से, मतलब अगर एक वालिद जो है ना, या वालिद या वाला चेक एंड बैलेंस करे, बच्चों को जो है ना तालीम दे, आगाही दे इस हवाले से भाई कि आपने दुरुस्त सेहत में मतलब मोबाइल फोन का इस्तेमाल करना है, अच्छे से इस्तेमाल करना है, तो बच्चा समझ जाएगा. लेकिन बात समझाने की है ना, वालदैन के पास खुद का टाइम नहीं होता. मतलब वालदैन जो है ना अपने एक मजों में लगे रहते हैं, अपनी एक एंजॉयमेंट में लगे रहते हैं, अपनी एक एंटरटेनमेंट में लगे रहते हैं, तो बच्चों को वो क्या खाक कोई टाइम देंगे. बच्चा तो फिर जो है ना जो चाहेगा, जो उसके मन में आएगा, जो उसकी मर्जी में आएगा, जो उसके दिल में आएगा वो करेगा. बात मेरी समझ, यकीनन कि मेरी इस बात को आप समझ चुके होंगे. लेकिन मोबाइल फोन का मसला, लेकिन ये मोबाइल फोन मसला नहीं है, इसका बेमकसद और बेकाबू इस्तेमाल. अगर एक नौजवान घंटों सिर्फ जो है ना वीडियो देखता रहे, एक पोस्ट से दूसरी पोस्ट, एक वीडियो से दूसरी वीडियो, एक ऐप से दूसरी ऐप पर जाता रहे, तो उसे अंदाजा ही नहीं होता कि उसके दिन का कितना कीमती वक्त जो है ना स्क्रीनिंग निगल गई है, स्क्रीनिंग खा गई है. चंद मिनट के लिए मोबाइल हाथ में लिया जाता है और फिर एक घंटा गुजर जाता है. इंसान सोचता है कि अभी तो मोबाइल उठाया था, लेकिन वक्त खामोशी से मतलब जो आहिस्ता आहिस्ता गुजरता चल जाता है. यही वक्त अगर तालीम, हुनर, वर्जिश, किताब, खानदान, इबादत, कारोबार या किसी मुस्बत सरगर्मी में लगाया जाए, तो चंद महीनों में इंसान की जिंदगी में नुमाया तब्दीली आ सकती है, चेंजिंग आ सकती है. बात मेरी समझ आ रही है या नहीं? देखें लिसनर्स, हमें अपने बच्चों और नौजवानों को ये समझाना होगा कि हर नोटिफिकेशन फौरी जवाब का तकाजा नहीं करता. बात मेरी समझ आ रही है आप लोगों को? हमें कोई भी नोटिफिकेशन आता है तो हम फौरन से जो है ना जवाब दे देते हैं. हमें अपने बच्चों और नौजवानों को ये समझाना होगा कि हर नोटिफिकेशन का जवाब फौरी हर नोटिफिकेशन फौरी जवाब का तकाजा नहीं करता. हर पैगाम या हर पैगाम का जवाब उसी लम्हे देना जरूरी नहीं है. हर वीडियो देखना जरूरी नहीं है. हर पोस्ट पर अपनी राय देना जरूरी नहीं है. और हर बहस में शामिल होना ये भी जरूरी नहीं है. मोबाइल फोन इंसान की तवज्जो का मालिक नहीं होना चाहिए जी. इंसान को खुद फैसला करना चाहिए कि मोबाइल कब इस्तेमाल करना है, क्यों इस्तेमाल करना है और कितनी देर इस्तेमाल करना है. अगर आप मोबाइल को अपने वक्त का मालिक बना देंगे तो आपका वक्त आपके हाथ से निकल जाएगा, आपका टाइम आपके हाथ से निकल जाएगा. लेकिन अगर आप मोबाइल को अपने मकसद के ताबे बना लेंगे तो यही मोबाइल आपकी तरक्की का जरिया बन सकता है. वालदैन की भी यहाँ बहुत बड़ी जिम्मेदारी है जी, कि बच्चों को सिर्फ ये कह देना कि मोबाइल इस्तेमाल ना करो, ये माशूम में मोबाइल में इस्तेमाल हो. बच्चों को सिर्फ ये कह देना काफी नहीं है कि मोबाइल इस्तेमाल ना करो. अगर वालदैन खुद हर वक्त जो है ना मोबाइल हाथ में रखेंगे तो बच्चे सिर्फ जो है ना नसीहत नहीं बल्कि अमल देखेंगे, प्रैक्टिकल देखेंगे. बात मेरी समझ आ रही है? बच्चे प्रैक्टिकल देखेंगे, बच्चे वही सीखते हैं जो घर में देखते हैं. अगर घर में खाने के वक्त मोबाइल एक तरफ रख दिए जाए, खानदान के साथ बैठते वक्त एक दूसरे से गुफ्तगू की जाए, सोने से पहले मोबाइल के इस्तेमाल को महदूद किया जाए और बच्चों को मोबाइल के मुस्बत इस्तेमाल की तरफ रागिब किया जाए, तो बच्चे भी आहिस्ता आहिस्ता एक मुतवाजन आदत इख्तियार कर सकते हैं. बच्चों से मोबाइल छीन लेना मुस्तकिल हल नहीं है, उन्हें जिम्मेदाराना इस्तेमाल सिखाना बहुत ज्यादा अहम है भाई. जिम्मेदाराना इस्तेमाल यूज के हवाले से बताएं कि भाई यूज किस तरह करना है. देखें, यहां एक और बात मैं कहना चाहूंगा कि नौजवानों को खास तौर पर यह समझाने की जरूरत है कि
सोशल मीडिया पर दिखाई जाने वाली हर जिंदगी हकीकत नहीं होती जी। लोग अक्सर जो है ना अपनी जिंदगी के खूबसूरत लम्हात देखते हैं, अपनी कामयाबियां देखते हैं, अपनी खुशियां देखते हैं, लेकिन अपनी परेशानियां, कर्जे, घरेलू मसाइल, तन्हाई और मुश्किलात अमूमन जो है ना सामने नहीं लाते। नतीजा ये निकलता है कि दूसरा नौजवान अपनी हकीकी जिंदगी का मुवाजना किसी दूसरे शख्स की मुंतखब की हुई चंद खूबसूरत तस्वीरों और वीडियो से करने लगता है। उसे लगता है कि सब खुश हैं, सब कामयाब हैं, सिर्फ मैं पीछे रह गया हूं। ये सोच इंसान के अंदर बेचैनी पैदा करती है, इसलिए याद रखिएगा कि सोशल मीडिया पर नजर आने वाली जिंदगी नहीं होती, ये सोशल मीडिया की जो रंगीन जिंदगी देखते हैं आप, ठीक है ना, ये मुकम्मल जिंदगी, परफेक्ट जिंदगी, कंप्लीट जिंदगी नहीं होती। और मोबाइल के जरिए झूठी खबरें, अफवाहें और गैर मुसद्दका मतलब जो एक मालूमात, ये बहुत तेजी से फैलती चली जा रही है ना। एक जिम्मेदारान शहरी की हैसियत से हमें हर खबर को फौरी

आगे भेजने के बजाय पहले सोचना चाहिए कि ये खबर कहाँ से आई है, इसका मोतबर जरिया क्या है और क्या वाकई ये दुरुस्त है। सिर्फ इसलिए कि किसी ने व्हाट्सएप ग्रुप में पैगाम भेज दिया जी, ये जरूरी नहीं है कि वो सच हो। एक गलत खबर किसी इंसान की इज्जत, किसी खानदान के सुकून, किसी कारोबार के एतमाद और पूरे माशरे के अमन को नुकसान पहुंचा सकती है। इसलिए मोबाइल का जिम्मेदाराना इस्तेमाल सिर्फ वक्त की पाबंदी नहीं बल्कि मालूमात की जिम्मेदारी भी है। अपनी जाती मालूमात मालूमात के हवाले से मैं यहाँ कुछ थोड़ी सी बात करना चाहता हूँ, जाती पर्सनल इंफॉर्मेशन के हवाले से, कि अपनी जाती मालूमात के मामले में भी एहतियात बहुत ज्यादा जरूरी है जी। अपना आईडी कार्ड, अपना शिनाख्ती कार्ड नंबर, बैंक की मालूमात, एटीएम या कार्ड की तफसील, पासवर्ड, ओटीपी, जाती दस्तावेज या दस्तावेजात मतलब और दीगर हसास मालूमात किसी गैर मुतलका शख्स के साथ शेयर नहीं करनी चाहिए। अगर कोई शख्स फोन पर फोन पैगाम या सोशल मीडिया के जरिए आपसे हसास मालूमात मांगे तो पहले जो है ना उसकी हकीकत की तस्दीक करें। और नौजवानों को खास तौर पर यह बात समझनी चाहिए, नौजवानों के हवाले से मैं ये बात कहना चाहूंगा लिसंस के, इंटरनेट पर हर शख्स वो नहीं होता जो वो अपने प्रोफाइल पर जाहिर करता है, अपनी प्रोफाइल पर जाहिर होता है। ऑनलाइन दोस्ती या कारोबार या कारोबारी रابطہ एहतियात जरूरी, मतलब जो है ना इसमें एहतियात बहुत ज्यादा जरूरी है। मोबाइल का एक और अहम पहलू हमारी गुफ्तगू और हमारी अखलाकियात पर भी है। हमें यह भी नहीं भूलना चाहिए कि मोबाइल की दूसरी तरफ भी इंसान मौजूद है। किसी की तस्वीर इजाजत के बगैर शेयर करना, किसी की वीडियो बनाकर मजाक उड़ाना, किसी की निजी तक पहुंचाना, जैली अकाउंट बनाना, गाली देना करना या किसी पैगामात के जरिए परेशान करना, जदीद दौर की ऐसी गलतियां हैं जिन्हें मामूली समझना दुरुस्त नहीं है। हमारी सिर्फ जाना उस वक्त महदूद नहीं होनी चाहिए जब हम आमने सामने का किरदार उस वक्त भी जाहिर होता है जब वो स्क्रीन के पीछे छुपा होता है। बात मेरी समझ आ रही है? इसी तरह मोबाइल फोन को क्लासरूम में, दफ्तर में, मस्जिद में, मजालिस में, खानदान की महफिल में और दूसरे अहम मौके समझदारी से इस्तेमाल करना बहुत ज्यादा जरूरी। हर जगह मोबाइल, ये भी जरूरी नहीं कि सामने बैठे हुए इंसान को अपना मोबाइल नीचे रख कर वक्त देना भी मोहब्बत और एहतराम की अमानत है। मतलब जो है ना एक तरीके से देखा जाए तो ये भी एक अलामत है जी। अगर वालिद आपसे बात कर रहे हैं तो मोबाइल की स्क्रीन से ज्यादा अहम उस वक्त आपके वालिद की बात है। अगर वालदा आपको कुछ बता रही है तो चंद लम्हों के लिए फोन एक तरफ रख देना चाहिए, कोई नुकसान नहीं। मतलब फोन एक तरफ रख देना जो है ना ये कोई नुकसान नहीं है, ये कोई लॉस नहीं है। अगर बच्चा अपनी बात सुनाना चाहता है तो उसे ये एहसास दिलाना चाहिए कि उसकी बात अहम है, इम्पोर्टेंट है। रिश्ते सिर्फ पैगामात से नहीं चलते, रिश्तों को वक्त, तवज्जो और मौजूदगी भी चाहिए होती है मेरे प्यारे सामीन। और रात को सोने से पहले मोबाइल का बेमकसद इस्तेमाल भी एक आदत बन सकती है। इंसान सोचते है कि सिर्फ 5 मिनट वीडियो देखूंगा, फिर जो है ना एक और वीडियो सामने आ जाती है, फिर एक और पोस्ट जो है ना सामने आ जाती है, फिर एक और पैगाम देखते देखते जो है ना सोने का वक्त गुजर जाता है। अगले दिन थकन महसूस होती है, काम में दिल नहीं लगता, पढ़ाई मुतासर होती है और इंसान दिन भर सुस्ती महसूस करता रहता है। इसलिए बेहतर है कि सोने के मामूल में मोबाइल के लिए वाज़े हद मुकर्रर की जाए और रात के वक्त गैर जरूरी नोटिफिकेशन से खुद को आजाद रखा जाए। बात समझ आ रही है या नहीं? पर गैप, ये तो मैंने तरीके इस्तेमाल के हवाले से बात की जी। आप अपनी साइड से, अपनी तरफ से जो है ना इस पर कोई बात ना कीजिएगा, क्योंकि हमारा एक फर्ज बनता है एक रेडियो ब्रॉडकास्टर होने की हैसियत से, एक आरजे होने की हैसियत से, कि यहाँ पे सिर्फ गाना बजाना ना हो बल्कि मालूमात भी आप लोगों तक पहुंचानी हो। सो ये आप लोगों के लिए फ्लाव बहबूद के लिए, मतलब जो है ना मफाद आमा के लिए पब्लिक सर्विस अनाउंसमेंट एंड पब्लिक सर्विस फेयर मैसेजेस दें।
ठीक है ना। आई

0: चिकन चिकन बीमारी है, चिकन ना बनाओ, कोई मछली मछली बनाओ।
1: मछली भी लाते हैं लेकिन वो हमारे से दूर है ना बाजार, इसलिए। और ये यहाँ पर चिकन वाला दुकान जो है ना बहुत नजदीक है, इसलिए हम चिकन लाते हैं बहुत।
0: सही सही सही, लेकिन चिकन

तोरा पंचपीर ने मैसेज कीजी और दीन अलावा अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम ताहिर भैया ईशाल यम जी ईशाल मनाना शुक्रिया जी ईशाल ने अलावा कम देनो मुंग सर सुख रगले दे सलाम भाई जान वालेकुम सलाम अदन यम जी अदन मैसेज की शुक्रिया अदन अदन ने अलावा नेक्स्ट सुख दीजी मारिया मैसेज की रुसमना डेर मनाना मारिया और मारिया ने अलावा प्लीज कॉल मी बैक एट बैलेंस रास्ता निश्ते गरीब यमा ऐसा नूर था और ठूल था जमाने साइड सलाम जी अमाया बुनेरवाला में आसरा प्रोग्राम के शामिल हुए जी अमाया ने अलावा जिसारत मैसेज की जी जिसारत ने अलावा जगम दे नौ सिद्रा पंचपीर ना मैसेज की सिद्रा ने अलावा जगम दे मुंगसर सुख रागली दी मनाहिल यम द सौबई ना मनाहिल द सौबई ना एंड फरियाल मैसेज की जी टोपैना शुक्रिया फरियाल गुलवरी ने मैसेज की सौबैना गुलवरी ने अलावा नेक्स्ट गमदन दासुक रागली दी ताहिरा मैसेज की सौबैना शुक्रिया ताहिरा सना काका खेला फ्रॉम काका सेब नोखार नोखार ने मैसेज करे जी खास बाजीगुल जी गमदन अपल प्रोग्राम के बैन खड़े दार नूर लोटे हम जी गमदन बैन का सभी हा खान मैसेज के जी गदुन्ना शुक्रिया जी गदुन वालो लेवने जी ने मैसेज के जी शुक्रिया लेवने जी ने हशमता हंगवाला हेरा यो जलबिया मैसेज के जी शुक्रिया हेरा आओ

0: मेन जांगीरी रोड बाने द शामनसूर बाबा मदरसे सरा देवाल पर देवाल हैदर मुमन होम्योपैथिक जनरल अस्पताल शामनसूर सवाबई होमोस बाने कालो की और दखपल बीमार द पारा नंबर वाखले 0330-93-94-94-1 हैदर मुमन होम्योपैथिक जनरल अस्पताल उस दो पेखोर सरसरा सता सुखार पो सवाबई की होम।
1: जिंदगी एक खूबसूरत सफर है। जब इंसान तंदुरुस्त हो तो हर दिन नया लगता है, हर सांस ताजगी भरी महसूस होती है। लेकिन जब बीमारी जिस्म पर दस्तक दे तो मुस्कुराहटों के रंग भी मधम हो जाते हैं। ऐसे वक्त में जरूरत होती है एक ऐसे मरकज़े शिफा की, जहां दवा के साथ साथ दुआ का यकीन भी शामिल हो। और अब वही यकीन, वही उम्मीद आपके अपने शहर सवाबी में, जहांगीरा रोड शाह मंसूर बाबा मदरसा के करीब शाह मंसूर में मौजूद है। हैदर मोमन होम्योपैथिक जनरल अस्पताल शाह मंसूर सवाबी। ये सिर्फ एक अस्पताल नहीं बल्कि इत्मीनान, भरोसे और शिफा की वो जगह है, जहां मरीज को फाइल नहीं एक इंसान समझा जाता है, जहां इलाज सिर्फ बीमारी का नहीं बल्कि इंसान के एहसासात का भी होता है। जेरे निगरानी डॉक्टर हैदर अली मोहम्मद, जो अपने तजर्बे, इल्म और खुलूस से हर मरीज के लिए शिफा का जरिया बने हुए हैं। उनके साथ मौजूद हैं हाई काबिल और महारत याफ्ता डॉक्टर्स की टीम, जो हर मरीज के इलाज को एक फर्ज, एक खिदमत और एक मिशन समझती है। चाहे मसला शुगर का हो या ब्लड प्रेशर का, मैदे के मसाइल हो या जोड़ों का दर्द, दमा, एलर्जी या सांस की दुश्वारी हो, खवातीन के अमराज या आसाबी थकन, हर बीमारी का कुदरती, महफूज और देरपा इलाज सिर्फ हैदर मोमिन होम्योपैथिक जनरल अस्पताल शाह मंसूर सवाबी में। यहाँ ना खतरनाक दवाएं, ना साइड इफेक्ट, बस खालिस होम्योपैथिक इलाज जो जिस्म के साथ दिल को भी सुकून देता है। क्योंकि यहाँ यकीन है कि शिफा दवा से नहीं दुआ से भी मिलती है। अपना अपॉइंटमेंट हासिल करने के लिए या बराह रास्त डॉक्टर हैदर अली मोहम्मद से राब्ता करने के लिए अभी कॉल करें 0331-939-4941। आपकी सेहत हमारा अज़्म, आपका एतमाद हमारी पहचान। हैदर मोमिन होम्योपैथिक जनरल अस्पताल शाह मंसूर सवाबी। कुदरती शिफा, दिल से दुआ। कुदरती शिफा, दिल से दुआ। हैदर मोमिन होम्योपैथिक जनरल अस्पताल शाह मंसूर सवाबी।
2: जवानी द जवानको न बगैर निमगिड़ी हुई हु कुचरता दग जवानको पवख बानी गम उनक लेशी नु प रारवान वक की दग जवान के सासु द खाइस द खराबे दो बाइस जुड़ देशी द ऑयल स्किन और द दानो द पारा यो डीर खास मेडिकेटेड फार्मूला डॉक्टर हैदर एंटी एक्नी फेस वॉश, डॉक्टर हैदर एंटी एक्नी क्रीम कम चिप सलूर सौ रुपए बानी बेहतर सर तैयार शुए। डॉक्टर हैदर एंटी एक्नी क्रीम, डॉक्टर हैदर एंटी एक्नी फेस वॉश कम चिप द ऑयल एक्नी द पारा देर बेहतरीन फार्मूला दा कम चिप सलूर उरजु की सासु द स्किन एक्नी पिंपल प मुकम्मल तो गबाने खत्म हुई। और आवाज दाना द दग दानो चकम दागो नदी आगा हम पो मुकम्मल तो गबाने खत्म हुई। पदे के बेहतरीन एक्टिव इंग्रेडिएंट शामिल दी लका बेंजोइल परऑक्साइड, सैलिसिलिक एसिड, टी ट्री ऑयल और क्लिंडामाइसिन कुमची यो डेर बेहतरीन एंटी बैक्टीरियल इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स।

0: रेडियो दिलबर अब कभी भी कहीं भी सुनिए हमारी वेबसाइट पर लॉग ऑन टू www.radiodilbar.pk.
1: वेलकम टू FM 94 ब्रॉडकास्टिंग लाइव फ्रॉम स्वाबी फ्रॉम 5 AM टू 1 AM.
2: ये रेडियो दिलबर स्वाबी है और आप रेडियो दिलबर FM 94 स्वाबी से इस्लामी नशरियात सुन रहे हैं.

0: ये रेडियो दिलबर सवाबी है और आप रेडियो दिलबर FM 94 सवाबी से इस्लामी नशरियात सुन रहे हैं।
1: आप सुन रहे हैं FM 94 रेडियो दिलबर सवाबी।
2: आप सुन रहे हैं दिलबर FM 94 स्वाबी से इस्लामिक ट्रांसमिशन।
3: आप सुन रहे हैं दिलबर FM 94 स्वाबी से इस्लामिक ट्रांसमिशन।
2: रूहानी सुकून, ईमान की रोशनी और दिल को छू लेने वाले लम्हे।
4: या हबीबी या मुहम्मद या नबी।
2: कुरान, सुन्नत, अखलाकी सबक और रूहानी गुफ्तगू, ये सब सिर्फ एक जगह दिलबर FM 94 स्वाबी।

आप सुन रहे हैं दिलबर FM सवाबी से इस्लामिक ट्रांसमिशन, कुरान की तिलावत, सुन्नत भरी बातें और दिल को सुकून देने वाले लम्हे। यहाँ हर लफ्ज में ईमान की रोशनी है। दिलबर FM 94 सवाबी। दिलबर FM 94

0: देवाल पर देवाल हैदर मुमन होम्योपैथिक जनरल अस्पताल शाह मंसूर सवाबई होमोस पर दे नंबर बा निकालो के और दोखपल बीमार दपारा नंबर वाखले 03131394941 हैदर मुमन होम्योपैथिक जनरल अस्पताल उस दो पेखोर सरसरा स्ता सुखार पर सवाबई क्यों हम
1: जवानी द जवानको न

सिपर 9 38 200 80 495 गुरु बजमुंग सर पलाइफ कार बानी सोकरा जी हो दचेरतन जी निकले तो पीछे सिपर 9 38 200 80 495 दागा प्रोग्राम तो स्पॉन्सर कई आर्थोपेडिक एंड ट्रामा सेंटर सवा भी कुम तचे आर्थोपेडिक एंड ट्रामा सर्जन डॉक्टर तारिक रहीम से तशरीफ रोड़ी द इतवार पर रस बांधे स्पेशल स्टाफ सुधा पारा द इस्लामाबाद ना नुकचाट हम सकिस्म द हडुकु मसलवी चाट हम सकिस्म द पटो मसलवी द जुड़ुनु मसलवी द रगुनु मसलवी न बिल्कुल जनाब अगुई रात लेशी और डॉक्टर तारिक रहीम से नखपल इलाज तरसर कवलेशी।

0: We'll be back right after the commercial break.
1: जिंदगी एक खूबसूरत सफर है. जब इंसान तंदुरुस्त हो तो हर दिन नया लगता है, हर सांस ताजगी भरी महसूस होती है. लेकिन जब बीमारी जिस्म पर दस्तक दे तो मुस्कुराहटों के रंग भी मधम हो जाते हैं. ऐसे वक्त में जरूरत होती है एक ऐसे मरकज शिफा की, जहां दवा के साथ साथ दुआ का यकीन भी शामिल हो. और अब वही यकीन, वही उम्मीद आपके अपने शहर सवाबी में, जहांगीरा रोड शाह मंसूर बाबा मदरसा के करीब शाह मंसूर में मौजूद है. हैदर मोमन होम्योपैथिक जनरल अस्पताल शाह मंसूर सवाबी. ये सिर्फ एक अस्पताल नहीं बल्कि इत्मीनान, भरोसे और शिफा की वो जगह है, जहां मरीज को फाइल नहीं एक इंसान समझा जाता है, जहां इलाज सिर्फ बीमारी का नहीं बल्कि इंसान के एहसासात का भी होता है. ज़ेरे निगरानी डॉक्टर हैदर अली मोहम्मद, जो अपने तजर्बे, इल्म और खुलूस से हर मरीज के लिए शिफा का जरिया बने हुए हैं. उनके साथ मौजूद हैं हाई काबिल और महारत याफ्ता डॉक्टर्स की टीम, जो हर मरीज के इलाज को एक फर्ज, एक खिदमत और एक मिशन समझती है. चाहे मसला शुगर का हो या ब्लड प्रेशर का, मैदे के मसाइल हो या जोड़ों का दर्द, दमा, एलर्जी या सांस की दुश्वारी हो, खवातीन के अमराज या आसाबी थकन, हर बीमारी का कुदरती, महफूज और देरपा इलाज सिर्फ हैदर मोमिन होम्योपैथिक जनरल अस्पताल शाह मंसूर सवाबी में. यहाँ ना खतरनाक दवाएं, ना साइड इफेक्ट, बस खालिस होम्योपैथिक इलाज जो जिस्म के साथ दिल को भी सुकून देता है. क्योंकि यहाँ यकीन है कि शिफा दवा से नहीं दुआ से भी मिलती है. अपना अपॉइंटमेंट हासिल करने के लिए या बराह रास्त डॉक्टर हैदर अली मोहम्मद से राब्ता करने के लिए अभी कॉल करें 0331-939-4941. आपकी सेहत हमारा अज़्म, आपका एतमाद हमारी पहचान. हैदर मोमिन होम्योपैथिक जनरल अस्पताल शाह मंसूर सवाबी. कुदरती शिफा, दिल से दुआ. कुदरती शिफा, दिल से दुआ. हैदर मोमिन होम्योपैथिक जनरल अस्पताल शाह मंसूर सवाबी.
2: मावेले माले द शारजाना काली रावड़ा
3: जो उस्ता कालू द पारा शारजी त सिंगल आर्शमा.
2: ओहो, पमीना बाजार दुबई की द शारजा ज्वेलर्स दुकान दे चटची द दुबई और द शारजा टोले वैरायटी मौजूद दा.
3: नुदा सिवाया कना
2: शारजा ज्वेलर्स. शारजा ज्वेलर्स. शारजा ज्वेलर्स. प्रोप्राइटर ज़ेब ब्रदर्स. फोन 0938273265.